0: दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात पृथ्वीते जखन धर्मे ग्लानी हय एवं अधर्म बेड़े जाए तखनी आमि निजेके सृष्टि करी। साधुदेर परित्राण, दुष्कृतिकारीदेर बिनाश एवं धर्म संस्थापनेर जन्य आमि जुगे जुगे अवतीर्ण हई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: प्रिय सुधी, ए पर्याये पवित्र बाइबेल थेके पाठ करछे बंधु एंजेलिका बारोई।
2: क्रूशेर चिह्न पिता पुत्र ओ पवित्र आत्मार नामे आमेन। आमी पवित्र बाइबेल थेके मथि लिखित मंगल समाचार 18 अध्याय 1 थेके 5 पद पर्यन्त पाठ करछि। शिष्यदेर प्रति विनम्रतार आदर्श पालनेर निर्देश। शिष्यरा जीशुर काछे एसे प्रश्न करलेन, स्वर्गराज्ये के सबचेये बड़? जीशु तखन एकटि शिशुके काछे डाकलेन एबं ताके तादेर सामने दाड़ करिये बोललेन, आमि तोमादेर सत्यि बोलछि, तोमादेर मध्ये जदि परिवर्तन ना आसे, तोमरा जदि शिशुर मतोई ना हये ओठो, ताहले तोमरा किछुतेई स्वर्गराज्ये प्रवेश करते पारबे ना। ताई যে নিজেকে এই শিশুর মতোই নম্র করে স্বর্গরাজ্যে সেই সবচেয়ে বড়। আর যদি কেউ আমারই জন্য এরই মতো একটি শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। এই হলো প্রভুর বাণী। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।
1: এই পর্বে পবিত্র ত্রিপিটক থেকে পাঠ করছে নৈরিতা বড়ুয়া।
3: নমোবোধায়।